सदगुरु कृपा करे, बख्शिश करे। गुरबाणी की पंक्ति सानू कहती है इसके बारे में।

जन नानक को हर बख्श ले हो, जन नानक को हर बख्श। हमारी जेहबा एक प्रब हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम मत अगम अगाह। हर देहो प्रभु मत गुर सतगुर के पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभु हम पापी संगत रहा। जन नानक को हर बख्श ले हो, हर तुटे मेल मिला। हर कृपा कर सुन बेनती, हर कृपा कर सुन बेनती, हम पापी किरम तरा।

गुरु साजी दिवाजी सात सिंह जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न की सेवा कर रहे हैं। श्री राग का जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असं ऋषभ कहने सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसको ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन दोनों सुरां दे समेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ है, जिस तरह

सतगुरे जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना जिवें हुण पहला जो रहाओ है वह ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया इस नू असीं दीपचंदी कहने हां 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस नू पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लाओ।

0: अमृतसर सतगुर सत मानती जितनाते कौवा हंस होए
1: सतगुर
0: अमृतसर की अमृत गुर अमृतसर नवधाया सब जाति।

जयस्पदी दस वसूली पाछा पविक बस कान विखुट गुआविक बिना दी दस बिहरली तुड़ा कहु कह करी ठाकुर सुनाचारा ताकु जस नमस्कार जग मान लग प्रमीठा।

हर जह कह तुझे प्रसाद सगल छिद्र ठाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभु ताक जिह प्रसाद तुझ कुओ ना पाहु जवा सा सा सिमर प्रभु जे प्रसाद पाई गुरलाभ दीह नान ताक भगत करेह जिह प्रसाद आपु खन पहरी जवा ते सिमरत प्यार सुखी जय जय प्रसाद सब हस्त सवार मन दस प्रभु काऊ कब

प्रसाद करहि पुनः बहदान मनाष्टर करत ध्यान उन्जे प्रसाद उचार व्यवहार देह प्रकाश शास्त्र दर्ज प्रसाद रसंद रूप सौ प्राव सिमरह सदानुज प्रसाद निकात सौ प्राव सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तिरि पात्र गुरु प्रसाद नानक जास कह जय प्रसाद सुनह करम अनाद जय प्रसाद पीख विस्मा जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहज वसना जय प्रसाद हस कर चरण जय प्रसाद संपूर्ण फल जय प्रसाद उपरम गद भाव जय प्रसाद सुख सहज सुमाव है सप्रभ त्याग कतला कह गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तुम प्रकट संसार तुह प्रभु नम नमसार जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूढ़ तू ताप जाप जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे दशा जान मन सदा है जुरे जय प्रसाद तुम पाव सा जुरे मन मेरे तू ता सुरा जय प्रसाद सब का तू नानक जाप जप जप सोयाब जपाई जप सुनाव आप गाव स्वरगुण गाव प्रभु कृपा तुम प्रकाश प्रभु दया तिकुण विकास प्रभु सुप्रसाद नव भाषा मंस प्रभु दया तिम तू तुम हुए सर्वनाधान प्रभु तेरी माया बहु कशु न करुण राया

ब्रह्म ज्ञान सकल क्रियनाया तुम रह ब्रह्म ज्ञान चिंदा ब्रह्म ज्ञान के सब परमाया ब्रह्म ज्ञान तिका शुभरा नाम पाया ब्रह्म ज्ञान सदा साम दर्श ब्रह्म ज्ञान के दृष्ट अमृत बरसी

सवनन के सब गौती भगवंत का पाव सुपंडित जो मर प्रभु राम नवाद महसुदा राम नम सार रह जीव पंडित कावदी स जाग जीव हर कथा हृदय सब सुपंडित फिर जो नाव वेद प्राण समृत जमूर सुखम वह जान सथूर चहवर नक देव दी सनन पंडित कव सदा दी सबीज मंत्र सर्व को ज्ञान चहवर नम जापै कुम जो जो जपै दुखी का दुर्सा संग पाव जन कोई

रचन प्रवरच बहुवेदन प्रकार अष्टपदी कई कोट हुई पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट वैदीर्थवासी कई कोट वन ब्रह्मदासी कई कोट वेद के स्रोती कई कोट तुपी सरहोती कई कोट

निज का साजा कब हुआ कुबीर तुम है आवे कब हूँ करा करा कह जो प्रभ राख देवही रह गुरु प्रसाद नानु साज कह कब हुए पंडित करि बखियान कब हम अंतारी लवतियान कब तट तीर्थ।

त्याग संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदावकारी संत का दुखी जान माया मारा संत के दुख ना सब देटाराय संत के दुखी को ना ठाऊ नान संत पावत नहीं मिलाई संत का दुखी आदबी ते टूटा संत का दुखी ते काज ना पाया संत का दुखी का उदयान परमाई गया संत का दुखी उजड़ पाई गया संत का दुखी अंतर दे थो था जो सास बिना मृत किलो था संत के दुख की जाड़ किस ना है आप बीज आप ही खा है संत के दुख को आवर न रख नान संत पावत नहीं ओ भैर संत का दुखी यूँ बेल लाए जो जल भी हूं मछली तड़फड़ाई।

सुखवेद कनय रखन प्रोय सिमर सिमर सिमर प्रासु नयन को विघ्न लाग कुयोस्तत मान महकार निरंकार कर मन वीर सद व्यवहार निर्मल रसना अमृत पीव सदा सुहिलाकार लिखि जियो नयन पीख ठाकुर करं सत्संग विनसा सत्संग चरण चरम वार गोविंद मिटि पाव जप अरविंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दर्कन अनुपूजन थविड भागी जान जग माह सदा सदा हर गुण गाय राम नाम जुकर विचार शीतन संसार मंतन मुख बोले हर मुखी

उपासना सोजन गत पाई और रूप सात जाका सात स्थान पुरुष सात गुरु प्रदान कर दू सात सत जाग वर्ण सात पुरुष स्मरण सात कर्म जाग रचना सात मूल सात सात उत्पात सात कारणी निर्मल निर्मली जिस बजाई तसा साव करी सात नाम पर सुखदाय विश्वास सात

जात है, जिसके श्रेष्ठ सो कारण आरव न बुझ कर विचार करते कि मैं इतना जान किया। नानक जो पाव सो वर दिया, विस्मन विस्म पै विस्मार जन बुझ जात है स्वाद। प्राव का रंग राज जान रही गुर का वचन पदार्थ है, लही हुए दात युद्ध काटन आर जाग संग धरा संसार। जान का सेवक सबड़ पाग जान का संग इकले वलागी, गुण गोविंद कीर्तन जान गावे गुरु प्रसाद नान फल पावे। सलोक आद सच जुगाद सच है, पिय सच नानक सी पिय सच अष्टपदी।

फिरत प्रभ आया पर्यत अवसरण आय नानक प्रभ बिनती अपनी भक्ति लाय पति जान जाच प्रभ दान कर कृपा दीव हर नाम साजन की मांगा तूर पार ब्रह्म श्रद्धा पूर।

अवसार प्राप्त की दृष्ट महासुख हुआ रह पावरा कोई जिन चाख्या जान त्रिवता ने पूर्ण पुरख नहीं डोला ने सुबर परि प्रेम रस रंग बुझा चाहू साध का संग परि सरना सब त्याग अंतर प्रकाश अन दिन लिवलाग बुढ़ पागी जपया प्रसुन को सुख हुए सेवक मनसा पूरी पही

केश संकुमायत। जाविस्का वरण किहन न जापत, तब हर्क सोग कहु किसै व्यापत। जब अपन आप आकार ब्रह्म तम्बुह कह किसवत परम।

प्रकाश अष्टपदी संत संग यंत्र प्रवडीठा नाम प्रभु कलगा मीठा सगद समिग्री एक कटमाहन करंग नाना दृष्टा ही नाव निध अमृत प्रभु का नाम दीहि मैं इसका विश्राम सुन समाय।

जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, मनमुख खादे गुरमुख उभरे।

तेज तेज नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो रासुंग ताम सुंग शांत रूपे नमो परम तत्तंगा तंतम स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञान नमो मंत्र मंत्र नमो ध्यान ध्यान नमो जुद जुधे नमो ज्ञान ज्ञानी नमो भोज भोजे नमो पान पानी नमो कलह करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रियनाथ विपुते कलंका रूपे अलंकार लंके नमो आशासे नमो बाक बंके अपंगी स्वरूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकाले नंगी अकामे एक अच्छी छंद अजय लया भय वय भोज अनास कास गंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल लेख बेख नाम काम गाह टाह नथे परमाथिया जोनि मोनि नरागिन रंगे न रूपे न रेखे अकर्मं अपर्मं अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तु प्रणामे समस्त प्रणासे अगंजु अनामे समस्त निवासे निरकामं विपूते समस्त स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सुतर्मं विपूते सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी करी मुल्क निंदा समस्त निवासी अजायब विभूते गजायब कनीमे हरियं करियं करी मुल रहीमे चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र भुगते सुयं भव

सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहुले पान पूज तरियो सिर का।

माया, ममता, आपां कहिंदे ने फलाने इंसान नूं बड़ी ममता है। भाव ममता तो की भाव है? आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मैं, आ भी मैं। हुण इह जिहड़ा मेरी मेरी दा ख्याल है ना, पातशाह कहिंदे ने इह ख्याल तैनूं रब तों दूर लै जाएगा। और इस मेरी मेरी दे ख्याल ने इहनूं माया कहिंदे ने। माया दा दंद तां कोई है नहीं, पर इस ने सारे संसार नूं बिना दंदां तों ही खा लिया। सारा संसार इस मैं मेरी दी लपेट विच आया होया है। मेरी मेरी तो भाव शुकराने विच नहीं रहना। जिहड़ा इंसान इह कहिंदा है ना, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, आ भी मेरा, मैं आ कर देंगा, मैं आ हाँ, उस तो की भाव है कि वह हिरदा रब की होंद नूं नहीं मनदा। वह कहिंदा है जो मैं करांगा ओही है, आ भी मेरा है। तो जदों हिरदा गुरु दे चरणा नाल सच्चे नाम दे नाल जुड़ गया, फिर वह ये नहीं कहिंदा मेरे मेरा मेरा, फिर वह कहिंदा है तेरा तेरा तेरा तेरा। सुल्तानपुर लोधी की धरती से धन गुरु नानक देव महाराज मोदीखाने विच बैठ के कह रहे ने, तेरा तेरा तेरा तेरा, सब कुछ तेरा परमात्मा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा तेरा तेरा। मैं नाहीं प्रभ, सब कुछ तेरा। इगै निर्गुण उगै सरगुण, केल करत विच स्वामी मेरा। जदों हिरदे विच पता लग गया ना, रब मेरे हिरदे दे अंदर बैठा है, केला कर रहा है, हुण सब कुछ वाहिगुरु तेरा ही है। भगत कबीर जी तुरे जा रहे ने, नक्शा खिंचया, महापुरखा ने सुनाया सी, भगत कबीर जी तुरे जा रहे ने, ते बकरा मैं करे। भगत कबीर जी कहिंदे ने मैं ना कर मारिया जाए। जंगल दे विच तुरे जा रहे, वो फिर भी मैं करी जावे, मैं ना कर मारिया जाए। वो मैं दी आवाज़ किसी शिकारी ने सुन ली, वेख्या बकरा बढ़ के मास खरीदन वाले मास लै गए, उहदी जिहड़ी खल सी, आ तबला वजदा है, ये बकरे की खल का बनिया हुंदा है। तबला किते बज रहा ते विचों आवाज़ आवे तू तू तू तू, भगत कबीर जी फिर तुरे जा रहे ने, तू तू की आवाज़ सुनी। कहिंदे जे पहले तू तू कह दिंदा ते मरदा कानू, पहले ही तू तू कह दिंदा कबीर तू तू करता तू हुआ, पहले शुकराने विच रहिंदा ते मरदा कौन। इंसान नूं उपदेश कर रहे ने इंसान, मैं ना करिया कर, तू तू।

0: को जन्म मरण के डरा साध जना की सरनी परा
1: जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ता कै बल बल जासा
0: बल पुरख मैं पुरख प्रधान साध संग जासा मिटै अपमान
1: आपस को जो जाने नीचा सो गणिए सब ते ऊंचा
0: आपा मन होए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना
1: मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल शिष्ट साजना
0: दुख दुख जन सम दृष्टि

0: राष्ट्रपति।
1: जय प्रसाशती अमृत खाहे तिष्ठा कर को रख मन माहे।
0: जय प्रसाश गंध ताला वह तिसको सिमरत परम गत पावे।
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर।
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरह तिस रसना।
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याये त्यावन जोग।
0: जय प्रसाद पाठ अंबर हटावे तिसे त्याग खत अवर लुभावे।
1: जय प्रसाद मन आठ पहरता का जस गावी जय।
0: जे प्रसाद तू सब को मान मुख ताको जस रसन बखाना।
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म।
0: प्रभु जी जबत दरगह मान पावे नानक पद तेती घर जावे।
1: जय प्रसाद आरो कंचन देही लिवला वो तिस राम स्नेही।
0: जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मान सुख पावे हर हर जस कहत।